0: सुखमणी सुखम रस प्रभ नाम
1: जना के मन विश्राम
0: रहाओ प्रभ के सिमरन गर्भ न बसे
1: के सिमरन दुख जम नसे
0: प्रभ के सिमरन काल पर हरे
1: के सिमरन दुश्मन तरे
0: प्रभ सिमरत कछ बिगन न लागे
1: के सिमरन अन दिन जागे
0: प्रभ के सिमरन भव न व्यापे
1: के सिमरन दुख न संतापे
0: प्रभ का सिमरन साध के संग
1: निधान नानक हर रंग
0: प्रभ के सिमरन रिद से जनौ निध
1: के सिमरन ज्ञान ध्यान तत्व
0: प्रभ के सिमरन

0: संत कृपा ते अंदिन जाग
1: नानक सिमरन पूरे पाग
0: प्रभु के सिमरन कार्य पूरे
1: प्रभु के सिमरन कबो न चूरे
0: प्रभु के सिमरन हर गुण बानी
1: प्रभु के सिमरन सहज समानी
0: प्रभु के सिमरन निश्चल आसन
1: प्रभु के सिमरन कमल विकासन
0: प्रभु के सिमरन अनहत चुनकार
1: प्रभु सिमरन का अंत न पार
0: सिमरे से जन जिनको प्रभु मया
1: नानक तिंजन सरनी पया
0: हर सिमरन कर भक्त प्रताए
1: हर सिमरन लग बेद उपाय
0: हर सिमरन पहे सिद्ध जति दाते
1: हर सिमरन नीचो कुंज जाते
0: हर सिमरन तारी सब करना
1: सिमर सिमर हर कारण करना
0: हर सिमरन कियो सगल अकारा
1: हर सिमरन में आप निरंकार
0: कर कृपा जिस आप बुझाया
1: नानक
0: नानक गुरमुख हर सिमर

0: हर हर जन के ओट सतानी
1: हर प्रताप जन अवर न जानी
0: ओत फोत जन हर सराते
1: समाज नाम रस माते
0: आठ पहर जन हर हर जपे
1: हर का भगत प्रगट नहीं छपे
0: हर की भगत मुक्त वो करे
1: नानक जन संकेत करे
0: पार जाते हर को नाम
1: देन हर हर गुण गाम
0: सबसे उत्तम हर की कथा
1: नाम सुनत दरद दुख लथा
0: नाम की महिमा संतरित बसे
1: प्रताप दुरत सब नसे
0: संत का संग बड़ भागी पाई है
1: सेवा नाम ते आई है
0: नाम तुल कछ अवर न होए नानक गुरमुख।

0: तुम ते हुए
1: नानक अवर न जानस कोए
0: परम तरम मैं श्रेष्ठ तरम
1: हर को नाम जप निर्मल कर्म
0: सगल क्रिया मैं उत्तम क्रिया
1: साध संग धर्मत मल हिरिया
0: सगल उद्यम मैं उद्यम पला
1: हर का नाम जपो जी सदा
0: सगल वाणी मैं अमृत वाणी
1: हर को जस सुन रसन

0: बस ते सागे राखे
1: प्रभ की आज्ञा मन है माखे
0: उसते चौगुन करे निहाल
1: नानक साहेब सदा दयाल
0: अनेक बात माया के हेत
1: सर पर होवत जान अनेत
0: दिख की छाया स्यो रंग लावे
1: ओ बिन से ओ मन पछतावे
0: जो दिसे सो चालन हार
1: लपट रहे ते अंध अंधार
0: बताऊ स्यो जो लावे ने
1: ताको हाथ न आवे के है
0: मन हर के नाम की प्रीत सुखदाई
1: कर कृपा नानक आप दयालाई
0: मिथ्या तन धन कुटुंब सभाया
1: मिथ्या हमें ममता माया
0: मिथ्या राजो बंधन माल
1: मिथ्या काम क्रोध विकराल
0: मिथ्या रथ हस्ती अश्व वस्त्र
1: मिथ्या रंग संग माया पेख हस्ता
0: मिथ्या त्रोह मोह अभिमान
1: मिथ्या पशु पर कर्त गुमान
0: अस्थिर भगत साध की शरण
1: नानक जप जप जीवे हर के चरण
0: मिथ्या श्रवण पर निंदा सुने
1: मिथ्या हस पर दर्व कोहिरे
0: मिथ्या नेत्र पेखत पर त्रय रूपाद
1: मिथ्या रसना भोजन अनुस्वाद
0: मिथ्या चरण पर विकार को तावे
1: मिथ्या मन पर लोभ लुभावे
0: मिथ्या तन्नई पर उपकारा
1: मिथ्या बास लेत विकारा।

0: गुणवत्ता के दुर्गंध
1: बिन सिमरन दिन रहन वृथा बिहाय
0: मेघ बिना जो खेती जाए
1: गोविंद भजन बिन वृथे सब काम
0: जो कृपण के निरार्थ दाम
1: तन तन तेजन जय घट बस्यो हर नाम
0: नानक ताके बल बल जाओ
1: रहत अवर कछ अवर कमावत
0: मन नहीं प्रीत मुखो गण रावत
1: जानन हार प्रभु परवीन
0: बाहर पेख न काहू पीन
1: अवर उपदेशे आप न करे
0: आवत जावत जन्म मरे
1: जिसके अंतर बसे निरंकार
0: इसकी सीख तेरे संसार
1: जो तुम पाने तिन प्रभ जाता
0: नानक।

0: साक्षती अमृत खाए,
1: इस सागर को रख मन माए,
0: जय प्रसाद सुगंध तन लावे,
1: इसको सिमरत परम गत पावे,
0: जय प्रसाद बसे सुख मंदर,
1: इसे त्याय सदा मन अंदर,
0: जय प्रसाद ग्रह संग सुख बसना,
1: आठ पहर सिमरो तिस रसना,
0: जय प्रसाद रंग रस भोग,
1: नानक सदा त्याय त्यावन जोग,
0: जय प्रसाद पाठ पटम्बर हटावे,
1: इसे त्याग का तवर लुभावे,
0: जय प्रसाद सुख से सोई जय,
1: मन आठ पहर ताका जस गवी जय,
0: जय प्रसाद तुझ सबको माने,
1: मुक्ता को जस रसन बखाने,
0: जय प्रसाद तेरो रहता तरम,
1: मन सदा त्याय केवल पार ब्रह्म।

0: प्रसाद तेरे सगल छिद्र ठाके,
1: मन सरनी पर ठाकर प्रभ ताके।
0: जय प्रसाद तुझको न पहुँचे,
1: मन सास सास सिमरो प्रभ उचे।
0: जय प्रसाद पाई दुर्लभ दे,
1: नानक ताकी भगत करे।
0: जय प्रसाद भूखन पैरी जय,
1: मन ते सिमरत को आलस की जय।
0: जय प्रसाद अस्वहस्त अस्वारी,
1: मन ते प्रभ को कबू ना विसारी।
0: जय प्रसाद बाग मिलक तना,
1: राख पर प्रभ अपने मना।
0: जित तेरी मन बनत बनाई,
1: उठत बैठ सत से आई।

0: प्रसाद तेरी पत रहे।
1: गुर प्रसाद नानक जस कहे।
0: जय प्रसाद सुने करन नाद।
1: जय प्रसाद पेखे विस्माद।
0: जय प्रसाद बोले अमृत रसना।
1: जय प्रसाद सुख सह जय बसना।
0: जय प्रसाद हस्त कर चले।
1: जय प्रसाद संपूर्ण फले।
0: जय प्रसाद परम गत पावे।
1: जय प्रसाद सुख सह समावे।
0: ऐसा प्रभु त्याग वर कत लागो।
1: गुर प्रसाद नानक मन जागो।
0: जय प्रसाद तू प्रकट संसार।
1: इस प्रभु को मूल न मनो विसार।
0: जय प्रसाद तेरा प्रताप।
1: रे मन मूड तू ताको।

0: गत होए,
1: नानक जाप जपे जप सोए,
0: आप जपाए जपे सोना,
1: आप गवाए सो हर गुण गाओ,
0: प्रभ कृपाते हुए प्रगास,
1: प्रभु दयाते कमल विगास,
0: प्रभ सुप्रसन्न बसे मन सोए।

0: प्रकट है अभिमान
1: साध के संग प्रगटेश हो ज्ञान
0: साध के संग बूझे प्रभ नेरा
1: साध संग सब होत नेरा
0: साध के संग पाए नाम रतन
1: साध के संग एक ऊपर जतन
0: साध की महिमा भरने कौन प्राणी
1: नानक साध की शोभा प्रभ माहे सुमानी
0: साध के संग अगोचर मिले
1: साध के संग सदा पर फुले
0: साध के संग आवे बस पंचा
1: साध संग अमृत रस पूंचा
0: साध संग होई सबकी रहन
1: साध के संग मनोहर

0: परमानंदा
1: सा संग जाने परमानंदा
0: साध के संग ना ही होत आप
1: साध के संग तजे सब आप
0: आपे जाने साध बढ़ाई
1: नानक साध प्रभु बन आई
0: साध के संग ना कब होत आवे
1: साध के संग सदा

0: सब धर्म
1: साध के संग केवल पार ब्रह्म
0: साध के संग पाए नाम निधान
1: नानक साधु के कुर्बान
0: साध के संग सब कुल उर्धार
1: साध संग साधन मीत

0: पलायन
1: सात संग अमृत गुण गायन
0: सात के संग सरब थान का काम
1: नानक साध के संग सफल जनम
0: सात के संग नहीं कश खाल
1: दर्शन भेटत हो तनिहाल।

0: क्या सारी
1: साध संगत पई हमारी
0: साध के संग मिटे सब रोग
1: नानक साध पेटे संजोग
0: साध की महिमा वेद न जाने
1: जेता सुने ते तब ख्याने
0: साध की उपमा ते गुण ते दूर
1: साध की उपमा रही भरपूर
0: साध की शोभा का ना ही अंत
1: साध की शोभा सदा बेअंत
0: साध की शोभा ऊंच ते ऊंची
1: साध की शोभा मूझ ते

0: जैसे जल में कमल अलेप,
1: ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्दोख,
0: जैसे सूर सर्व को सुख,
1: ब्रह्म ज्ञानी के दृष्ट समान,
0: जैसे राज को लागे तुल पवान,
1: ब्रह्म ज्ञानी के तीरज एक,
0: जो मसूदा को खोदे को चंदन लेप,
1: ब्रह्म ज्ञानी का एस गुनाओ,
0: नानक ज्यो पावक का सह सुभाओ,
1: ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मला,
0: जैसे मैल न लागे जला,
1: ब्रह्म ज्ञानी के मन हुए परगास,
0: जैसे तर ऊपर आकाश,
1: ब्रह्म ज्ञानी के मित्र सतर समान,
0: ब्रह्म ज्ञानी के नाही अभिमान,
1: ब्रह्म ज्ञानी ऊंचते ऊंचा,
0: मन अपने हैं सब ते नीचा,
1: ब्रह्म ज्ञानी से जन पे,
0: नानक जन प्रव आप करे,
1: ब्रह्म ज्ञानी सगल की रीना,
0: आत्म रस ब्रह्म ज्ञानी चीना,
1: ब्रह्म ज्ञानी की सब ऊपर मया,
0: ब्रह्म ज्ञानी से कछु बुरा न पया,
1: ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी,
0: ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट अमृत बरसी,
1: ब्रह्म ज्ञानी बंधन से मुक्ता,
0: ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल ज्योता,
1: ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान,
0: नानक ब्रह्म ज्ञानी

0: ब्रह्म ज्ञानी ले तावत बंधा,
1: ज्ञानी के होए सो फला,
0: ब्रह्म ज्ञानी सुफल फला,
1: ब्रह्म ज्ञानी संग सगल उदार,
0: नानक ब्रह्म ज्ञानी जपे सगल संसार,
1: ज्ञानी के एक के रंग,
0: ब्रह्म ज्ञानी के बसे प्रभ संग,
1: ज्ञानी के नाम आधार,
0: ब्रह्म ज्ञानी के नाम परवार,
1: ज्ञानी सदा सद जागत,
0: ब्रह्म ज्ञानी अहंग बुद्ध त्यागत,
1: ज्ञानी के मन परमानंद,
0: ब्रह्म ज्ञानी के कर सदा आनंद,
1: ज्ञानी सुख सहज निवास,
0: नानक ब्रह्म ज्ञानी।

0: करे प्रभ आप
1: ब्रह्मज्ञानी का वट पर ताप
0: ज्ञानी का दर्श पर पागी पाइये
1: ब्रह्मज्ञानी को बल बल जाइए
0: ज्ञानी को खोजे महेश्वर
1: नानक ब्रह्मज्ञानी आप परमेश्वर
0: ब्रह्मज्ञानी की कीमत नाहे
1: ब्रह्मज्ञानी के सगल मन माहे
0: ब्रह्मज्ञानी का कौन जाने पेद
1: ब्रह्मज्ञानी को सदा आदेश
0: ब्रह्मज्ञानी का कथ्या न जाए अदाखर
1: ब्रह्मज्ञानी सर्व का ठाकुर
0: ब्रह्मज्ञानी की मित कौन बखाने
1: ब्रह्मज्ञानी की गत ब्रह्मज्ञानी जाने
0: ब्रह्मज्ञानी का अंत न पार
1: नानक ब्रह्मज्ञानी को सदा नमस्कार
0: ब्रह्मज्ञानी सब सृष्टि का कर्ता
1: ब्रह्मज्ञानी सब जीवे नहीं मरता
0: ब्रह्मज्ञानी मुक्त जुगत जी का दाता
1: ब्रह्मज्ञानी पूर्ण पुरख विदाता
0: ब्रह्मज्ञानी अनाथ का नाथ
1: ब्रह्मज्ञानी का सब ऊपर हाथ
0: ब्रह्मज्ञानी का सगल आकार
1: ब्रह्मज्ञानी

0: मन की वासना मन ते ठहरे
1: जित पंच दुख ते रहत
0: नानक ओड़ में देखो ऐसा प्रस
1: सो जिस ऊपर सो प्रसन्न
0: विषण की माया ते हो भिन्न
1: कर्म
0: देश वैस नौका निर्मल धर्म
1: काहू फल की इच्छा नहीं बाचे
0: केवल भगत कीर्तन संग राचे
1: सिमरन गोपाल
0: सब पर होवत कृपाल
1: अबरा नाम जपावे
0: नानक वैष्णव परम गत पावे
1: भगवती भगवान भक्त का रंग
0: सगल त्यागे दुष्ट का संग
1: सगला परम
0: कर पूजे सगल पर ब्रह्म
1: संग पापा मल खुवे
0: देश भगवती की मत उत्तम होवे
1: भगवान की टहल करे नित नीत
0: मंत्र ने अर्पे विषण प्रीत
1: हृदय बसावे
0: नानक ऐसा भगवती

0: तट तीर्थ स्नान
1: कबू सहसा दखौ ज्ञान
0: कबू कीट हस्त तंग होए जिया
1: अनक जौन पर मैं परमिया
0: नाना रूप जसवागी दिखावे
1: जो प्रभावे तेवे जावे
0: जो तिस पावे सोई होए
1: नानक दूजा अवर न कोए
0: कबू सास संगत एह पावे
1: उस स्थान ते बहर न आवे
0: अंतर होए ज्ञान प्रगास
1: उस स्थान का नहीं विनाश
0: मंथन नाम रते एक रंग
1: सदा से पर ब्रह्म के संग
0: जो जल में जल आए खटाना
1: त्यों ज्योति संग जो समा

0: का मिटे अभिमान
1: सो जन नानक दर गह परवान
0: ओट कर्म करे अवतार
1: धर्म पावे सर ले विचारे
0: अनेक बस करे अहंकार
1: नरक स्वर्ग फिर अवतार
0: अनेक चितन कर आतन नहीं द्रवे
1: हर दर गे को कैसे गवे
0: आपस को जो भला कहावे
1: तिसे भलाई निरत न आवे
0: सर्व की रेन जाका मन होए
1: वह नानक ताकी निर्मल सोए
0: जब लग जाने मुझसे कछ होए
1: तब इसको सुख नाही कोए
0: जब जाने में किस करता
1: तब लग गर्व जोन में फिरता
0: जब तारे कौ बैरी मीत
1: तब लग नेचर नाही चीत
0: जब लग मोह मगन संग माए
1: तब लग धर्म रह देश।

0: राज है।
1: स्वप्न में नौर सबर के सब काज्य है।
0: नाम रंग सरब सुख होए,
1: बड़ भागी किसे प्राप्त होए।
0: करण करावण आपे आप,
1: सदा सदा नानक हर जाप।
0: करण करावण करने हार,
1: इसके हाथ कहाँ विचार।
0: जैसी दृष्ट करे तैसा होए,
1: आपे आप आप प्राप्त होए।
0: जो किस किन्नो सो अपने रंग,
1: सबते दू सब के संग।
0: मुझे देखे करे विवेक,
1: आपे एक आपे अनेक।
0: मरे न बिन से आवे न जाए,
1: नानक सद ही रह समाए।
0: आप उदेश समझे आप,
1: आपे रचे सबके साथ।
0: आप किनो आप मन विस्तार,
1: सब कछ उसको करने हार।
0: उससे पिन कहो किछ होए,
1: शांत नंतर एक कैसे होए।
0: अपने चलित आप करने हार,
1: कौत करे रंग अपार।
0: मन में आप मन अपने माहे,
1: नानक कीमत कह न जाए।
0: सत सत सत प्रभ स्वामी,
1: गुर प्रसाद के ने वख्यानी।
0: सच सच सच सब कीना,
1: कोड़ में देखे ने बिरले चीन।
0: भला भला भला तेरा रूप,
1: अत सुंदर अपार अनूप।
0: निर्मल निर्मल निर्मल तेरी वाणी,
1: कट कट सुनी सरवण।

0: कटे
1: संत के दुखन जमते नहीं छूटे
0: संत के दुखन सुख सब जाए
1: संत के दुखन नरक में पाए
0: संत के दुखन मत होए मलीन
1: संत के दुखन सो बाते ही न
0: संत के हते को रखे न कोई
1: संत के दुखन ठान प्रश होए
0: संत कृपाल कृपा चेक करे
1: नानक संसंग निंदक भीतरे
0: संत के दुखन ते मुख पवे
1: संतन के दुखन काग ज्यो जावे
0: संतन के दुखन सरप जोन पाए
1: संत के दुखन त्रे के जोन किरमाए
0: संतन के दुखन तृष्णा मह जले
1: संत के दुखन सब को चले
0: संत के दुखन तेज सब जाए
1: संत के दुखन नीच न जाए
0: संत दुखी का था कुनाहे
1: नानक संत पावे ता ओए बिगत पाए
0: संत का निंदक महा अतताई
1: संत का निंदक टिकट न पाए
0: संत का निंदक महा हत्यारा
1: संत का निंदक परमेश्वर मारा
0: संत का निंदक राष्ट्रहीन
1: संत का निंदक दुखियार दीन
0: संत के निंदक को सर्व रोग
1: संत के निंदक को सदा विजोग
0: संत की निंदा दुख में दुख
1: नानक संत पावे ता उसका भी होए मोख
0: संत का दुखी सदा अपवित
1: संत का दुखी किसे का नहीं मित
0: संत के दुखी को डान लागे
1: संत के दुखी को सब त्यागे
0: संत का दुखी महाअहंकारी
1: संत का दुखी सदा भिखारी
0: संत का दुखी जन्म मरे
1: संत की दुखना सुखते करे
0: संत के दुखी को ना ही ठाओ
1: नानक संत पावे ता लय मिलाए
0: संत का दुखी अत बीच टूटे
1: संत का दुखी किते काज न पहुँचे
0: संत के दुखी को ध्यान फरमाइए
1: संत का दुखी उज्जड़ पाइए
0: संत का दुखी अंतर तेत होता
1: जो सास बिना मेर तक ये लोता
0: संत के दुखी की जड़ खिचना है
1: अपन बीजा पे ही खाए
0: संत के दुखी को अवर न रखन हार
1: नानक संत पावे ता लय
0: संत का दुखी यो बिल लाए
1: ज्यो जल भी हूं मछली तड़पड़ाए
0: संत का दुखी भूखा नहीं राजे
1: ज्यो पावक इंद्र नहीं त्रापे
0: संत का दुखी छुटे अकेला
1: ज्यो बुआर तेरे खेत में दुहेला
0: संत का दुखी धर्म ते रहत
1: संत का दुखी सद मिथ्या कहत
0: तिरत नंदक का तुरही पया
1: नानक ज्योतिष पावे सोई थिया
0: संत का दुखी बिगड़ रूप हो जाए
1: संत के दुखी को दरगे मिले सजाए
0: संत का दुखी सदा सहकाइये
1: संत का दुखी न मरे न जिवाइये
0: संत के दुखी की पूजे न आशा
1: संत का दुखी उठ चले निराशा
0: संत के दुख न तृष्टे कोए
1: जैसा पावे तैसा कोई होए
0: पया कीर्तना मिटे कोए
1: नानक जाने सच्चा सोए
0: सब कर तिसके ओ करने हार
1: सदा सदा तिसको नमस्कार
0: रब की उस्तत करो दिन रात
1: जिसे थे अब सास ग्रास
0: सब कुछ बढ़ता तिसका किया
1: जैसा करे तैसा को थिया
0: अपना खेला करने हार

0: बान है।
1: एक ऊपर जिस जन की आशा
0: जिसकी घटिए जमकी भाषा
1: पार ब्रह्म की जिस मन पूख
0: नानक जिसे न लागे दुख
1: जिसको हर प्रभ मंचित आवे
0: सो संत सहेला नहीं डुलावे
1: जिस प्रभ अपना कृपा करे
0: सो सेवको किसे डरे
1: जैसा सत ऐसा दृष्टाया
0: अपने कार्य में आप समाया
1: सोदत सोदत सोदत सीजिया
0: प्रसाद तब सब उजिया
1: जब देखो तब सब किछ मूल
0: नानक सो सुखम सोई असूल
1: नह किछ जन्म नह किछ मरे
0: अपन चलत आप ही करे
1: आवन जावन दृष्ट अंदृष्ट
0: आज्ञाकारी तारी सब श्रेष्ठ
1: आप सगल में है आप
0: अनेक जोग तरह छाप थाप
1: अविनाशी ना ही किछ खंड
0: तारन तारे उभरे मंड
1: अलख अपे पुरक प्रताप
0: आप जपाए त नानक जाप
1: जिन प्रभ जाता सुशोभावंत
0: सगल संसार उदरे तन मंत
1: प्रभ के सेवक सगल उदाहरण
0: प्रभ के सेवक दुख विसारण
1: आपे मेल लय कृपाल
0: गुर का शब्द जप।

0: पुरिया सब पवन
1: नाम के संगत रहे संसार
0: कर कृपा जिस अपने नाम लाए
1: तो जनगत पाए
0: रूप सच्चा का सत स्थान
1: पुरख सत के बल प्रदान
0: सतूत सत सच्चा की बानी
1: सत पुरख सब माए समानी
0: सत कर्म चा की रचना सत
1: मूल सत सत उत्पत
0: सतनी निर्मल निर्मली
1: जिसे बुझाए तिसे सब भली
0: सत नाम प्रभु का सुखदाई
1: विश्वास सत नानक गुर ते पाई
0: सत वचन साधु उपदेश
1: सत जन जाकर जय प्रवेश
0: सत निरत बुझे जे कोय
1: नाम देवता की गत
0: आप सत किया सब सत
1: अपे जाने अपनी मित गत
0: सुकर नेहार
1: अबर न बोझ करत विचार
0: देखी मित ना जाने किया
1: नानक ज्योतिष पावे सो

0: जिनकी गुर गुरमत मल हरे
1: गुरबत निहर नाम उचरे
0: गुर सिख के बंधन काटे
1: गुर का सिख बेकार से हटे
0: गुर सिख को नाम तन दे
1: गुर का सिख बड़ भागी है
0: गुर सिख हलत पल सवारे
1: नानक सतगुर सिखो जी नाल समारे
0: गुर के ग्रह सेवक जो रहे
1: गुर की आज्ञा मन में सहे
0: उसको कर कछ न जनावे
1: हर हर नाम हृदय सत गावे
0: बेचे सतगुर के पास
1: सेवक के कार्य रास
0: सेवा करत हुए निह कामी
1: इसका होत प्राप्त स्वामी
0: अपनी कृपा जस आप करे
1: नानक सो सेवक गुर की मत ले
0: इस विस्मय गुर का मन माने
1: सो सेवक परमेश्वर की गत जाने
0: सो सतगुर जिस हृदय हर नाओ
1: अनक बार गुर को बल जाओ
0: सर्वनिधान जी का दाता
1: आठ पह पार ब्रह्म रंग राता
0: ब्रह्मे जन जन में पार ब्रह्म
1: एके आपने ही कच परम
0: सह से अणत लय न जाइये
1: नानक ऐसा गुर बड़ भागी पाइये
0: गुर दर्शन देखत पनीत
1: प्रसन्न चनगत निर्मल रीत
0: संग राम गुण रवे
1: पार ब्रह्म की दरगे गवे
0: सुन कर बचन करन अकाने
1: मन संतोखा दंपत्याने
0: पूरा गुर रखियो जा का मंत्र
1: अमृत देश पे खेहो संत
0: गुण बेअंत कीमत नहीं पाए
1: नानक जिस पावे जिस लय मिलाए
0: निर्भा एक पुस्तक अनेक
1: सतपुरख पूर्ण विवेक
0: बोल न पहुंचत प्राणी
1: अगम गोचर प्रभ निर्वाणी
0: निराहार निर्वैर सुखदाई
1: ताकि कीमत किने न पाई
0: हरक भगत बंधन नित करे सत बलहारी सतगुर अपने इहो हरस पावे जन कोए
1: अब पिए अमृत होए
0: पुरख का नाही कदे विनाश
1: जाके मन पर दे गुणतास
0: आठ पर हर का नाम ले
1: सच उपदेश वको दे
0: ओ माया के संग न लेप
1: मन में रखे हर हर एक
0: अंधकार दीप प्रगासे
1: नाने परमो दुख तहते न से
0: तुम्हे ठाट वरताई
1: अनंत व्या दुख नाठे पाई
0: जन्म मरण के मिटे अंदेसे
1: साधु के पूर्ण उपदेशे
0: का निर्भव हुए बसे
1: सगल व्याजमान देखे न से
0: सौतन कृपा धारी
1: संग जप नाम मुरारी
0: पाई चुके परम गमन
1: सुन नानक हर है जस सरवण
0: गुण आप सरगुण पियो ही
1: कला तार दिन सगली मोही
0: अपने चरित प्रभाव बनाए
1: अपनी कीमत आप पे पाए
0: दूजा नाही कोए
1: सर्व निरंतर एक सोए
0: पोत पोतर व्या रूप रंग
1: पाए प्रकाश साध

0: सिमरनाम आधार
1: अब रूपाम सब मीत बिसारो
0: चरण कमर मह उतारो
1: करण कारण सो प्रभ समरथ
0: दृढ़ कर गहो नाम हरवत
1: यो तन संचो हो वो भगवंत
0: करण कारण
1: एक आस राखो मन माहे
0: सर्व रोग नानक मिट जाए
1: जिस तन को चार

0: सो बापा जी हर की सरनी
1: अनिको पावी रोग न जाए
0: रोग मिटे हर अब खदलाए
1: सर्व निदान में हर नाम निदान
0: जप नानक दर गए परवान
1: मन पर बोधे हर के नाए
0: दर्द सावत आवे।

0: हरे नाओ
1: सिमर सिमर सदा सुख पाओ
0: ओ बिन से पूरन हुई आस
1: भगत पाया संपर्कास
0: कर जाय बसे अविनाशी
1: और नानक काटी जा फांसी।

0: विसरेगी।
1: सो क्यों बिसरे अगचे अगन मह राखे,
0: पर प्रसाद को बिरला लाखे।
1: सो क्यों बिसरे जी बिकते काडे,
0: जन्म जन्म का टूटा गंध है।
1: गुरपुरे तत इहे बुझाया,
0: रबे अपना नानक।

0: जब निर्गुण प्रभु सहज सुभाए,
1: तब से सकत कहो कि ठाए,
0: जब आपे आप अपनी जो तरे,
1: तब कवन निडर कवन कर डरे,
0: अपन चल सब करने हार,
1: नानक ठाकुर अगमा पार,
0: अविनाशी सुख अपन आसन,
1: जन्म मरण को कहाँ विनाशन,
0: जब पूर्ण करता प्रभु सोए,
1: तब जम की त्रास कहो किस होए,
0: जब अभिगत गोचर प्रवे का,
1: तब चित्र कुपत किस पूछत लेखा,
0: जब नाथ निरंजन गोचर अगाधे,
1: तब कौन छुटे कौन बंधन बांधे,
0: अपन आप ही अचरजा,
1: नानक आपन रूप आप ही ऊपर जा,
0: यह निर्मल पुरख पुरख पथ।

0: जब अपनी शोभा अपन संग बनाई,
1: तब कवन माए बाप मित्र सुत पाई,
0: यह सर्व कला आपे परवीन,
1: वेद कतेव कहां कोची,
0: जब अपन आप उड़ता रहे
1: सगन अब

0: जातिस पावे ता श्रेष्ठ उपाय
1: अपने पाने लय समाये
0: तुम ते पिन नहीं किछ होए
1: आपन सु सब जगत परोए
0: जाको प्रभु जियो आप बुझाए
1: सत नाम सोई जन पाए
0: सो समदर्शी तत्क बेता
1: नानक सगल श्रेष्ठ।

0: कहाँ को जाए।
1: निरंजन राय
0: जी की जुगत जाके सब हाथ,
1: अंतर बाहर जानो साथ,
0: गुण निधान बेअंत अपार,
1: नानक दास सदा बलिहार,
0: पूरनपुर रहे दयाल,
1: जब पर होवत कृपाल,
0: अपने कर्तव्य जाने आप, प्रित पाने जी यन वो पात,
1: जो जो रचे सत्य से त्यात,
0: जिस पावे तिस लय मिलाए,
1: भगत करे हर के गुण गाए,
0: मन अंतर विश्वास कर मान्या,
1: करण हार नानक एक जान्या,
0: जन्ना का हर एक के नाए,
1: जिसकी आस न व्यर्थी जाए,
0: सेवक को सेवा बन आई,
1: हुकम बोझ परम पद पाई,
0: इससे

0: नहीं छूटे,
1: जिस प्रभ राखे तिस ना ही दुख,
0: नाम जपतवन हो सुख,
1: चिंता जाए मिटे अंकार,
0: इस जन को कोई न पहुंचे हार,
1: सिर ऊपर ठांडा गुरसूरा,
0: नानक ताके कार्य पूरा,
1: मत पूरी अमृत चाकी दृष्ट,
0: दर्शन पेखत उदर श्रेष्ठ,
1: चरण कमल जाके अनूप,
0: सफल दर्शन सुंदर हर रूप,
1: तन सेवा सेवक परवान,
0: अंतर जामी पुरख प्रदान,
1: जिस मन बसे सहोत निहाल।

0: तो ना ही बुरा
1: और कहो कि ने किच करा
0: आप भला कर तू अपनी की
1: आपे जाने अपने जी की
0: आप साथ सारी सब साथ
1: ओत पोत अपन संग राच
0: हकीकत मित कहीं न जाए
1: दूसर होए तो सो जी पाए
0: किसका किया सब परमान
1: पर प्रसाद नानक हो जाने
0: जो जाने तो सदा सुख होए
1: आप मिलाए ले प्रभ सोए
0: ओतन मंत कुल मंत पतवंत।

0: ब्रह्म निकट कर पेख
1: सास सास सिमरो गोविंद
0: मन अंतर की उतरे चिंद
1: आस अनित त्यागो तरंग
0: जना की तुम मन मंग
1: आप छोड़ बेंती करो
0: संग अंक
1: हर तन के पर ले पंडार।

सचे साहिब क्या नहीं करती रै। सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसावे, कह नानक सच्चे साहिब क्या नहीं करते रे। सच्चा नाम मेरा आधारो, कर सांत सुख मन आए बसिया, जिन इच्छा सब पुजाइया। कह नानक सुनो संतो शब्द तरु प्यारो, सच्चा नाम मेरा आधारो। बाजे पंच छां

सगल समगरी तुमरे सुतरहारी तुमते हो सौ आगे अकार तुमरी गात में तो तुम ही